0: आप सुन रहे हैं YFM 105.4।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: 104.
1: You're listening to Vibe FM 105.4.
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

आखा ना जरा भी आखा होर की तेनू देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी सी।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: मेरे जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इस हवा की तरह।
1: आप सुन रहे हैं वाइब FM 105.4।

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: YBFM 105.4. You're listening to YBFM 105.

0: आप सुन रहे हैं YFM 105.4।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: आप सुन रहे हैं YFM 105.4।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205 today.
1: सुबह से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइब पे 105.4
2: तुमने शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
3: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
2: सच्ची? ये ऐसे

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

आखा ना जरा भी आखा होर की तेनू देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जांदी लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी सी।